0: ठीक हो बारे
1: चंगे थोंग चंगे ती चौसा चम्रे जी मैं मंगू जी ये कोमा दिक्सिंग दा चेक दिक्सिंग चेक आयुंग जी
0: हाँ ले चेक संचे रामे ने योया मितो पेमी चुगो ये शे
1: ये का पेमी पीने जी में बेस्ट रोशि तू
0: पेमी चुगो
1: ये शे लेन बुझां जी
0: ये शे योंग मैं नी चो
1: आ चु में
0: करी ना
1: 第一个月了你爸爸大花街了我有人看中俺我心里都得命度
2: 对不起用啊前头让着我嘛这第四种也怎么着吧用啊让给我这边的一道给我是来去